छोरा अभिमन्यु जन्मना गए रानी सुभद्रामा मारिएर नमा कुल छिए भयो बचेनन् कोही तहाँ रानी श्री अभिमन्यु की पनि थिइन् श्री उतारा गर्विनी तिनै बाट पछि परिचित भए गर्वे टुरा बनी नारायण।

がりかな。いへらまへらまへらまい。まさぱんどばいおるけばえばねできうたぱきぱらまたま。さてじわしゃぱさり、らじゅうにれ。さてじわしゃぱさり、やだばはる、じょうびぷらかしらぱれ。साराची भए प्रभा सतीरामा देखे जसै कृष्णले दिक्माने मनमा कुल छिए भयो जानु पर्यो लौ भनी सुरहारण होइ भन्नु पनि भयो दाजै बलराम पनि नारायण।

मेरो यो मनले दियौ मोह पारी रसवास देऊ म गुन्चाम जाने छु तिम्रा पुत्रैलाई गद्दी दिने छु भन्या ईसा।

0: सामुदायिक पहुँचका लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

0: रेडियो सैलो सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ट्ज
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

0: Bier, Extreme Energy Drink.
1: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज़।

0: Bibonia. Extreme energy drink.
1: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।

नमस्कार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 MHz म बद्र प्रसाद सापकोट आज विक्रम सम्मत 2083 साल श्रावण कृष्ण पक्ष सन 2026 अगस्त 3 तारीख श्रावण 18 गते सोमबार पञ्चमी तिथि अब स्तुति गरौं आयु द्रोण कुमार कैसरी हो सक्षण कल्पे भरी

मेरो नाम सूर्यबहादुर थापा, भिनपा तीन तारथलीबाट म हनुमान चालिसा रेकर्ड गर्न चाहन्छु। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमनम गुरु सुधारी वर्ण रघुवर विमल दस जो दायको फलचारी बुद्धि हिन दोन जानी के सुनिर पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मई हर कलश विकार ओम जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपिश तिम्रो उजागर रामदूत अद्वैत बलधाम अञ्जनी पुत्र पवन सुत नाम महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार्य स्मृति की संगी कंचन वर्ण विरास वेशा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ बर्ज और ध्वज विराजई कांधे मुझे जनव साजई शंकर सुमन केसर नंदन तेज प्रताप महाजगबंधन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर पर्व चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप दरी से दिखवाया विकट रूप बदल लंगा दरवाया हेम रूप दरी असुर संहारी रामचंद्र की काज संवारी लाए सजीवन लखन जी आये श्री रघुवीर हरसिउर लाए रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतम भाई सहज बदन तुम्हारा जस गावे अजक श्रीपति कंठ लगावे सनकादि ब्रह्मादि मुनिषा नारद सारद सहित ऐसा हेम कुबेर दिक्पाल जहाते कवि गोविंद कैसे के कहते तुम उपकार सुग्री भई किना राम मिलाए रात पद दिना तुम्हारो मंत्र भी विषण मान लंकेश्वर भय सब जग जान युग सहस्र योजन पर भानु लिलो ताई मधु फल जानु प्रभु मंदिरी का मेली मुखमाई जल्दी लागी गए अतर जनाई दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते राम दुबारे तुम रखवारे वतन आज्ञा बिना पैसारे सब सुखलाई तुम्हारी शरणा तुम रक्षे काम को डरना आपन तेज समारोह आपे तीनों लोग हागते कापे भूत पिता से निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हर सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन कमर वचन ध्यान जलावे सब पर राम तब श्री राजा तिनके काज सकल तुम साजा अवरो मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारो जुग प्रताप तुम्हारा है परसी जगदेव जियारा साधु संत के तुम रखवारी असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नमनिधि के दाता अस्वर दिन जान की माता राम रसायन तुम्हारी पासा सदा रो रघुपति दासा तुम्हारी भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुबरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त खाई और देवता चिदन धरई हनुमत से ही सर्व सुख करई संकट कटई मिट सब पीरा जो सुमिरई हनुमत बलबीरा जय जय जय हनुमान गोसाई कृपा कर हूँ गुरुदेव की नाई जो सतबार पाठ कर कोई छुटी बंदी माँ सुख हुई जो ये पड़े हनुमान चालीसा हो सिद्धि साखी गौरीसा तुलसीदास सनाहरी चेरा किजनाथ हृदय महडेरा ओम पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसवंश रूप सियावर रामचंद्र शंकर जी बजा जय हनुमान जय बजरंग बली।